Τι μιλάει, είναι η Χεμάια Διέξη, η Βιζέα Δικαρικό Αβάσμα, Χαμίου Γίτσον, δεν θυμάμαι, δεν είναι σχεδόν, δεν είναι γίτκο, σα σάτμα, καρικρόμ, χαμρο άζεκο, διβάκο σε λίγο, ο αντίμ, τσάνακο γιατρά, σιρούπα, είσαι έκο, σε γιάνου, σοβελέ, καρικρόμ, σου χιουάγατε, μια νοηβά, δεν είναι παρακφίλη, δεν είναι μελίτα, κρόμα, τσάι, μα σιρή, σε νεβάρ, τα πάει κοσιά, μα σου, καρικρόμ, κο σάτμα, γιάνου, σοβελέ, πάκο, επειδή σα αντιρώνω, βάκο, σε πανε, άσα γόντα σου, γιατί χαρά, σομαία, ηλι, δίνου, σου, τίν, βαζέρα, σου, ρα, μην Στην μηχανή τη Αγγλία, αλλά βάγκα από το 26 το press conference, κομμάτι με τα αρπαρή, σαμεγρή, ράχνη τα γέννημα τσούμα. Άμα τα γεωγράζ ράι, κατά σαπτάντα, τι από γνωμάει και θεού, από γκάρχα κάπ, το 26, χούντα ίσα, από αούνε, αίτε μάρκο δίνμα τα πέσα, βέρα τάβα και κουράχου, σαν δεν είναι μη μαϊνά μάτσε, μάρκο γιου καρικρόμ ρόνι, κατά σα, μη μαϊνά κουσέ, αντίμ σαπτά μα. सोमबारको दिनमा ब्याङ्क हलिडे पर्छ त्योभन्दा ठिक अघिल्लो दिन उहाँहरूले गर्ने गर्नुहुन्छ सधैँ नै गोर्खा कप चमुदीको आयोजनामा र 24 मेको दिनमा यसपटक यो गोर्खा कप तयार भएको छ र यही सिलसिलामा चाहिँ त्यहाँको यो प्रेस कन्फरेन्स त्यहाँको कार्यक्रम त्यो दिन कस्तो के हुन्छ भन्ने कुराकानीको लागि चाहिँ नि प्रेस कन्फरेन्स गरिएको थियो त्यही सिलसिलामा चाहिँ तपाईँको लागि तयार पारिएको यो सामग्री सुन्नको लागि तयार हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा गरेको छु यति भन्दै अब म तपाईँलाई रेमन्ती राईले गाउनुभएको गीत सुनाउँछु र गीत अथवा भनौँ यो म्युजिकल ब्रेक पश्चात हाम्रो आजको यो प्रस्तुतर्फ लाग्नेछौँ है त